0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: जबरदस्त हिट।
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beat.
8: Wow,
9: FM. Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

Better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: लग दे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: Get ready to move.
9: It's all about the beats. Wow,
10: FM. Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: The radio station for people who love music.
1: But 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।

0: Dubai.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जाएगा।
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रेसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beat.
2: Wow, FM.
3: Only tune super.
4: Teddy, is it a? Yeah, commercial to sun li.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
8: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
10: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: आप सुन रहे हैं

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Yo, yo, yo, yo. Got an Angela.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: Zabardast hits.
1: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
1: I love it.
3: Beautiful girls all over the world. I could be.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
11: hayatweddings.co.uk।
12: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
13: द स्टेशन
14: दैट प्लेज
13: फुट टैपिंग म्यूजिक।

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
3: रेडियो फजा 97.1 FM।

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: Hit music.
1: Back to back.
2: Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
9: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
12: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
13: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
12: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
13: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
12: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
13: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
12: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS.
13: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
12: टेस्ट भी वाइब भी.
14: You are staying. We are playing.
15: Fuzz on 97.1 FM.
16: The station with the best music.
17: Best music.
18: I love the music.
19: Best music. Fuzz on 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are playing Fazan 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE। To book your ticket, visit www.wallingtonhall.org.uk/e. Media partner Radio Faza.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG82AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
1: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG82AE।
2: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
1: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: जबरदस्त।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आए और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/Eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
6: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
6: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
6: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07 8 2 8

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beat. Wow,
2: FM. Only Tune Super Hit Channel.
3: Fizz on 97.1.
4: It's commercial time.
5: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
9: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m.
8: Wellington Park

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंगम, NG82AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid want to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलेटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org।
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
13: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
14: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
13: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
14: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
13: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
14: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
13: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
14: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
13: टेस्ट भी, वाइब भी।
15: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक
5: बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा,

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
1: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
2: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ HMO लाइसेंस फॉर योर प्रॉपर्टी? लुक नो फर्दर देन एलीट केयर फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस, योर रिस्क असेसमेंट सर्वेयर्स and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG82AE. Book your tickets, wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are listening. We are playing Fazan 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705-825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
5: चले उनका पता भी बता दे, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: Oldies Goldies.
1: You are listening 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Fuzan 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
9: Hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 0777-970-5825, वॉलिटन पार्क,
4: Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. To phir intezar kis baat ka hai? Eid Mela. Book your tickets. Please visit walletonhall.org.uk/Eid. Media partner Radio Faza.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हाँ जी, मुंडा सदुआ

Better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलेटन पार्क फॉर्मल गार्डन नॉटिंघम NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/Eid।
3: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपर मार्केट 126-132 ग्रासिंगटन रोड NG8 3P Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

0: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rullaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets, rullatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828 139 630 or 0777 970 5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.
1: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
2: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
3: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है. ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है. चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग. ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है.
4: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो. पाकिस्तान फॉरम नॉटिंगम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट. स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे. हफ्ता 13 जून 2026, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं. ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंगम की जानिब से. कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस. फन डे फॉर ऑल द फैमिली. प्लीज कॉन्टेक्ट 07828139630 और 07779705825. Rullaton Park, Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE.
5: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला. Book your tickets. Please visit rullatonhall.org.uk/Eid.
6: Media Partner, Radio Faza.

0: So hot.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fuzan 97.1 FM.
3: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
4: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
6: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, Formal Gardens, Nottingham, NG8-2AE.
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला। बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहाँ होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियाँ और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
6: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
7: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Wellington Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets wellingtonhall.org.uk/eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: ते दुनिया तो सोने तेरे हाथ।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ,

0: ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: डिलिशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है। ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है। चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग, ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस। फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
5: बिगर एंड बेटर the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825। वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
4: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid।
5: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG82AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट walletonhall.org.uk/eid।
4: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
3: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीक का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला ईद इन द पार्क 2026 पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825 वॉलिटन पार्क फॉर्मल गार्डन्स नॉटिंघम NG82AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallitonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
4: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।
5: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollaton Park Formal Gardens, Nottingham, NG82AE. Book your tickets, rollatonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: Roof, a radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियां हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस, जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 777-970-5825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE।
3: तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid।
2: मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।

0: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: सलासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
5: Ready to move.
6: It's all about the beats.
7: Wow, FM.
8: Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. You are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हर साल जून की खुशबू साथ लेकर आता है, ईद मेला मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, चेहरों पे मुस्कुराहट, दिलों में खुशी के रंग। ये दिन हर किसी के लिए यादगार बन जाता है।
2: ईद की खुशियाँ हो, खानदान साथ हो और तफरीह का रंग भी भरपूर हो। पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम पेश करता है ईद इन द पार्क 2026, जहां होगा मजेदार खानों का जायका, रंगारंग स्टॉल्स, खूबसूरत मेहंदी, बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प सरगर्मियां और शानदार लाइव एंटरटेनमेंट। स्टेज पर होंगे मारूफ गुलकार, मजाया फनकार और दिलकश परफॉर्मेंसेस जो आपकी ईद को और भी यादगार बना देंगे। हफ्ता 13 जून 2026 दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ आएं और ईद की खुशियां मिलकर मनाएं। ईद मेला, ईद इन द पार्क 2026, पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम की जानिब से। कम एंड सेलिब्रेट ईद विद अस, फन डे फॉर ऑल द फैमिली। प्लीज कॉन्टेक्ट 07-828-139-630 और 07-779-705825, वॉलिटन पार्क, फॉर्मल गार्डन्स, नॉटिंघम, NG8 2AE। तो फिर इंतजार किस बात का है? ईद मेला, बुक योर टिकट्स, प्लीज विजिट wallertonhall.org.uk/eid। मीडिया पार्टनर रेडियो फजा।
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारक।

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: करें।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P।

0: Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m.
1: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
2: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
4: hayatweddings.co.uk।
5: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham.

0: NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: This is 97.1 Fazer FM.
4: You're listening to Radio Fazer 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour